नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, PPE किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। IPL क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाई

फायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ।

साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया।

0: ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे

0: 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और PV सिंधु भारतीय चुनौती

0: पति की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में PV सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्म पत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोक सत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: और इसी म्यूजिकल यूर्स पर आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव. आज मैं हूँ आप लोगों के साथ और मेरे साथ एक और हैं खजम खास गेस्ट, हमारे नए दोस्त स्पेशली, और जिनका नाम है आरजे
2: आदित्य.
1: बस तो फिर सही है, आज एक्चुअली खूब जमे करेंगे, जब मिल बैठेंगे तीन यार, मैं आदित्य और आप सब लोग हम लोगों के बीच. वेल, लेकर आया हूँ आपका फेवरेट शो मस्त मुंबई यहाँ पर, और उसमें आपका फेवरेट सेगमेंट कल, आज और कल. जैसा कि आपको पता है कि हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की बातें करते हैं, और अगर खासकर मुंबई शहर से जुड़ी हुई हो, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हो, तो बातें आपके पास लेकर आते हैं. और आज मुंबई से मोहब्बत करने वालों, आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई, मुंबई के मस्ताने. और मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं है, एक एहसास है. यहाँ हर बिल्डिंग के पीछे एक कहानी है, हर गली के पास एक याद है, और समुंदर के उस पार एक ऐसी दुनिया बसती है जो सदियों से चुप रहकर भी बहुत कुछ कह रही है. आज हम लोग बात करेंगे, यानी कि हम दोनों ही बात करेंगे आप लोगों से, उन पत्थरों की जो बोलते नहीं है लेकिन वक्त की आवाज़.

0: संभाले बैठे हैं। और आज का सफ़र है एलिफेंटा केव्स का, जैसा कि आप लोगों को हम लोग हमेशा ही आते हैं और कहीं ना कहीं घुमाने के लिए ले जाते हैं। सो राइट आदित्य।
1: हाँ बिल्कुल, ये जो जगह जो होती है ऐतिहासिक जगह, वहाँ पे इन गुफाओं में एक अलग सा सुकून होता है, एक है ना, एक इतिहास का जो एक अटूट सा पन्ना वहाँ में नजर आता है।
0: हाँ, और उसके साथ मॉडर्निज्म और मिल जाता था और ज्यादा मजा आता है, चार चांद लगते हैं। तो वेल, आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो एक गीत सब लोगों के सामने पेश कर देते हैं और उसके बाद आते हैं यहाँ पर हम लोग वापस। गाना है किशोरदा की आवाज में, जिंदगी एक सफर है सुहाना। स्टे ट्यून्ड, बी विद अस।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ मैं आपका हमराज आरजे अभिनव, मुंबई का छोरा, और साथ में इस बार आरजे आदित्य। तो हम लोगों की जुगलबंदी आप लोगों के साथ रहेगी। जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग बात कर रहे हैं एलिफेंटा केव्स की, लेकिन आज हम हिस्ट्री लेसन नहीं करेंगे। आज हम लोग उन गुफाओं को एक जिंदा रूह मानेंगे, एक ऐसी रूह जिसने अपना कल देखा, अपना आज जिया, और जो कल को लेकर भी अभी उम्मीद रखती हैं। और इसी के लिए हमारा खास सेगमेंट है कल आज और कल। और सोचिए, अगर एलिफेंटा केव्स बोल पाती तो वो क्या कहती। शायद वो ये कहती,
1: मैं पत्थर जरूर हूं लेकिन बेजान नहीं, मैं चुप जरूर हूं लेकिन बहरी नहीं, मैं अंधेरी गुफा जरूर हूं लेकिन मेरे अंदर सदियों का प्रकाश बसा है।
0: मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में जब लोकल ट्रेन का हॉर्न, ट्रैफिक का नॉइस, डेडलाइंस और नोटिफिकेशंस हमें ज़्यादा थका देते हैं ना, तब कभी कभी ज़रूरत होती है एक ऐसी जगह की जो हमें याद दिलाए कि वक्त का असली मतलब क्या है। और जैसे कि आदित्य ने अपनी आवाज़ में बोला भी हम लोगों से तो बिल्कुल वैसी ही याद आ जाती है हम लोगों को। वेल, अब आप लोगों के पास लेकर आ रहे हैं हम लोग शहर, क्योंकि कुछ क्या है, मॉडर्निज्म वाले गाने हों तो आपको हम लोग जोड़ के रखेंगे इतिहास से, कल आज और कल से। अब अगर आप भी शहर में किसी से मिलने वाले हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो बस सुनिए ये गीत, स्टे ट्यून्ड विद अस 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो।
2: प्लैटिनम रिकॉर्ड शहर टेक वन।

0: और एलिफेंटा केव्स वही जगह है गेटवे के पास से जब बोट चलती है, हवा धीरे धीरे चेहरे को छू जाती है, समंदर की खुशबू, दूर से दिखते पहाड़, और फिर धीरे धीरे सामने आता एक टापू।
1: आज लोग उसे टूरिस्ट स्पॉट जरूर कहते हैं, लेकिन कभी उसे घरापुरी कहा जाता था। एक छोटा सा द्वीप, आइलैंड, लेकिन अंदर एक पूरा संसार, और वक्त है कल का, यानी कि आने वाले कल का। वैसे उसको लेकर तो जरूर बाद में बात करूंगा, पहले मुझे ये बताओ आदित्य, क्योंकि मैं काफी समय तक वहां पहुंचा ही नहीं था, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि एलिफेंटा केव्स जाना हुआ कभी, या मतलब आते ही गए मुंबई में कैसे?
0: हाँ, एलिफेंटा केव्स बचपन की बहुत सारी उसमें मेमोरीज है मेरी, क्योंकि वहां पे जैसे हम बोट से उतरते हैं, वहां पे एक छोटी सी ट्रेन चलती है। अच्छा। और वो बिल्कुल ही समंदर के नजदीक, वो जो व्यू जो होता है, वो जो नजारा होता है, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। और शाम को हम जब वो टापू पे घूम के आ जाते हैं, बंदरों को कुछ चने वगैरह खिला के ऐसे वगैरह, काफी नजारे वहां मिलते हैं देखने को। और जब शाम को उस वक्त समुन्दर के किनारे वो सूरज ढलता हुआ सूरज दिखता है और वो ट्रेन वहां से गुजरती है, तो वो नजारा बहुत खूबसूरत।
1: ये रास्ता मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं पता, मैं बोट से गया था, मुझे ये वाला ट्रेन वाला चंक दिखा नहीं, और या फिर मैं अब गया था, क्योंकि मैं गया हूँ ये 2025।
0: मैं बिल्कुल मेरे बचपन में, मतलब 2007 या 2005 में मैं गया हूंगा, तो अभी मुझे पता भी नहीं कि वो ट्रेन वहां पे चलती है या नहीं, क्योंकि वो टापू से लेके आपको बंदरगाह तक पहुंचाती है, मतलब जहां से बोट चलती है।
1: मैंने तो एक्चुअली लड़के लिया था, मतलब वो ट्रिप, मतलब मैंने इतने सालों से देखा नहीं, मैं मुंबई में 2012 से, तो मेरा जाने नहीं हुआ, तो मैंने दोस्त से लड़के लिया कि नहीं नहीं मुझे तो जाना है, कैसे ही मेरा हुआ नहीं है जाना, तो मैं वहां तो जाऊंगा। वेल, जैसा कि उन्होंने अपने बचपन की याद बताई आदित्य की, और वो स्वीट ऑफ 16 हमेशा ऐसे ही बने रहे, स्पेशली वो अभी भी उतनी बचपन में दिखाई देते हैं हम लोगों को।
0: बिल्कुल,
1: स्पेशली लेकर आता हूँ कितनी हसीन जिंदगी है।
0: जरूर,
1: क्योंकि भाई जिंदगी वाली बात है, और आप सब लोग हमें सुन रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड, बी विद अस। भेजता हूँ आप लोगों को ये गाना, ये सुनाता हूँ।

आप लोगों के बीच बना हुआ हूँ मैं, मेरे साथ हैं आदित्य है, लेकिन कुछ कुछ बात करनी थी, लेकिन बीच में हम लोग चाह रहे हैं कि छोटा सा एक ब्रेक लें। हालांकि कुछ बोलने आगे बढ़ने से पहले भी मन तो करता है कि आप लोगों से कुछ कहें। सदियों पहले जब ना मोबाइल था, ना सोशल मीडिया था, ना फ्लैश फोटोग्राफी, तब यहाँ सिर्फ हथौड़ा और चिजल की आवाज़ आती थी, यानी कि छेनी और हथौड़े की आवाज़ वो गूंजती थी। अब सोचिए कैसे लोग होंगे, पत्थर को सिर्फ तोड़ते नहीं थे, उसमें जान भर देते थे। आते हैं आप लोगों के पास हम वापस, ज़रूर थोड़ी सी देर में।

0: आप लोगों के साथ बने हुए हैं मैं और साथ में हैं
1: आदित्य। तो हम बात कर रहे थे एलिफंटा की, है ना। हर मूरत, हर दीवार, हर स्तंभ एक तपस्या का नतीजा था। ऐसा लगता है जैसे एलिफंटा केव्स कहती हो,
0: मैं जन्मी थी शोर में नहीं, साधना में। मेरे अंदर बाजार नहीं लगते थे, प्रार्थना जगती थी। यहां लोग सेल्फी लेने नहीं, खुद को ढूंढने आते थे।
1: और फिर अंधेरे पत्थरों के बीच उभर के सामने आता है एक महान रूप, त्रिमूर्ति का।
0: एक चेहरा नहीं,
1: तीन रूप।
0: बिल्कुल। सृजन, संरक्षण और विनाश, यानी कि सृजन, संरक्षण और विनाश। आप ट्रिलॉजी के बारे में सब जानते हैं, ट्रिनिटी के बारे में सब जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको बताएंगे आदित्य।
1: तो एलिफेंटा केव्स जैसे कह रही हो,
0: इंसान सिर्फ बनाता नहीं है, कभी संभालता है, कभी तोड़ता भी है, और हर युग में यही कहानी दोहराई जाती है। बेसिकली वही ब्रह्मा विष्णु महेश वाली के, कोई सृजन कर रहे हैं, कोई पालन कर रहे हैं, और कोई विनाश कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है
1: जी। उस दौर में समंदर भी अलग होगा, शांत, गहरा, जैसे वो भी गुफाओं के राज संभालने ही बना हो।
0: बस आते हैं आप लोगों के पास छोटे से प्यारे से ब्रेक के बाद।
2: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
3: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।

0: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: हम लोग दोनों ही बने हुए हैं आप लोगों के साथ। मैं आरजे बना हूँ, मेरे साथ हैं आरजे
1: आदित्य।
0: बस और स्पेशली कुछ सारी बातें और हमें कहनी है, लेकिन आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं जिनके हमारे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। और अच्छा। आदित्य भाई, तुम्हारे और मेरे लिए तो एक कविता भी आई है।
1: अच्छा,
0: कमाल की बात है। तो विजेंद्र घाटोल है अकोला से, प्रणव शिंदे हैं, प्रदीप अंतकृष्णन है, पंकज मोहड़ है, प्रमोद चिंचलोकर है, महेश है, बाबा है दादर से, और भी बहुत सारे लोग हैं। आर्य सूर्यवंशी है, फिरोज शिगनपुरिया है, और हम दोनों तो हैं आप लोगों के साथ। स्पेशली हम लोग बात कर रहे थे आज एलिफेंटा केव्स की, बाकी बातें आदित्य बताएंगे।
1: तो इन एलिफेंटा केव्स हो या ऐसी जगहों पे रात को शायद दिए जलते होंगे, मंदिरों में मंत्रों की आवाज गूंजती होगी, और हवा पत्थरों से टकरा कर एक अलग ही संगीत बनाती होगी।
0: बिल्कुल, कभी कभी पता है कैसा लगता है आदित्य, ऐसा लगता है कि हिस्ट्री किताब में नहीं होती है, हिस्ट्री हवा में होती है, दीवारों की दरारों में होती है।
1: क्या बात,
0: और एलिफेंटा केव्स उसी हिस्ट्री का तो जिंदा एहसास है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी लगता है कि फिर वक्त बदला, सत्ताएं भी बदली होंगी, नाम भी बदले होंगे, नजरिए भी बदल गए, है ना, लेकिन ये गुफाएं वही रही है।
0: कितना अजीब है ना, इंसान वक्त के साथ बदल गया लेकिन पत्थर अपनी जगह टिके रहते हैं।
1: और वो शायद कहते होंगे
0: बस तो ठीक है, कहने के वक्त हम लोग आप लोगों के पास लेकर आएंगे कुछ ना कुछ और चीज, प्यारा सा छोटा सा ब्रेक। कहते क्या होंगे, अब आदित्य ने बात की तो मैं लेकर ही आता हूँ। कि तुम लोगों ने शहर बदल लिए, रास्ते बदल लिए, जिंदगी की रफ्तार बदल दी, लेकिन मैं अभी भी वही हूँ। मैं अब भी इंतजार कर रही हूँ किसी ऐसे इंसान का जो मुझे सिर्फ देखे नहीं बल्कि समझे। बेसिकली गुफा के कहने का मतलब है कि बस वहां पर आकर वक्त बिताए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बस।
1: तो मुंबई में हम जो रहते हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम सिर्फ फ्यूचर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन एलिफेंटा केव्स हमें रोक कर कहती है,
0: पीछे मुड़कर भी देखो, वहां तुम्हारी पहचान छुपी हुई है। आते हैं आप लोगों के पास एक प्यारे से छोटे से ब्रेक के बाद।
2: Cosmos Digital Bank. Cosmos Digital Banking सेवा आसान और सुरक्षित।
3: इंटरनेट बैंकिंग,
2: मोबाइल बैंकिंग,
3: व्हाट्सएप बैंकिंग,
2: eKYC,
3: NEFT, RTGS,
2: IMPS,
3: Cosmos रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
2: UPI जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट Cosmos बैंक में जरूर होना चाहिए।
3: Cosmos Cooperative Bank, Enriching Life.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: तो अभिनव, एलिफेंटा का कल सिर्फ राजाओं और कलाकारों की कहानी नहीं है, ये भरोसे की कहानी है। पत्थर पर भरोसा, काल पर भरोसा और समय से आगे जीने वाला, सपनों पर भरोसा
1: और काल के साथ साथ कला पर भी भरोसा। पहले सोचिए कि कितने हाथों ने मिलकर ये सब बनाया होगा।
0: हाँ,
1: किसी को नाम नहीं मिला, किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ और किसी के तो फॉलोअर्स ही नहीं थे।
0: बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने जो बनाया वो हजार साल भी दुनिया देख रही है।
1: हाँ, बिल्कुल, हजार साल बाद भी। और ये होता है असली क्रिएशन, यू नो, क्योंकि जहाँ काम इंसान से बड़ा हो जाता है। और शायद एलिफेंटा के पत्थर आज भी धीरे से मुस्कुरा कर यही कहते होंगे,
0: हम टूट कर भी बचे रहे, तुम्हारे शहर बदलते रहे, हम वक्त की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे।
1: दोस्तों, वक्त है अब एक छोटे से सफर का, सफर सोच का। आप भी कभी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए समंदर, बोट, हवा और सामने एक प्राचीन गुफा।
0: वाह,
1: कभी कभी इमेजिनेशन भी मेडिटेशन बन जाती है। और बढ़ते हैं हम आज की तरफ। आज की तरफ बढ़ने से पहले बस लेकर आता हूँ एक और गीत, क्योंकि बात सफर की है तो सफर को लेकर आता हूँ, है ना।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: यार सच बताऊं अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है इस बार तो लगवा ही देता हूँ जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई आप भी लगवा ही दो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in

0: और अब बात करते हैं हम लोग आज की, आज आज एलिफेंटा केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। टूरिस्ट आते हैं, फोटोज लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, रील्स शूट होती हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हम वाकई देख पाते हैं जो हमारे सामने है? आज के एलिफेंटा केव्स जैसे हमसे कहती हो,
1: तुम मुझे कैमरा में कैप्चर कर लेते हो, लेकिन क्या तुम मुझे महसूस भी करते हो? आज मुंबई का पेस अलग है, सुबह लोकल ऑफिस मीटिंग, स्ट्रेस, नोटिफिकेशंस, लेट नाइट स्क्रोलिंग, और फिर भी अंदर एक खाली जगह रह जाती है। शायद इसीलिए लोग हेरिटेज प्लेसेस पर जाते हैं, क्योंकि पुरानी जगह है हमें स्लो होना सिखाती है। क्यों?
0: बिल्कुल लगता है। एलिफेंटा केव्स का आज एक अजीब कॉन्ट्रास्ट है, बाहर टूरिस्ट एनर्जी, अंदर प्राचीन शांति।
1: वाह,
0: एक तरफ बच्चे हंस रहे हैं, दूसरी तरफ सदियों पुरानी मूर्तियां चुपचाप खड़ी हुई हैं।
1: जैसे वक्त के दो युग एक ही जगह मिल रहे हो।
0: बस इसके बाद अब क्या लगता है वो जरूर बताऊंगा, लेकिन अब पहले पेश करता हूँ ये एक गीत हम दोनों की तरफ से आप सभी लोगों के लिए, 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स, परिंदा।

0: बनाऊ मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अपना 107.1 एफएम रेनबो मुंबई पर, और मेरे साथ हैं आदित्य। हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों से किसकी, बस मुंबई में वही सेगमेंट जो है कल आज और कल और एलिफेंटा केव्स की। कल की बात हो गई, आज की बात हो गई, आने वाले कल की बात तो होगी, लेकिन आज की बात में अब मुझे वो कुछ और कहना है। वो ये है कि और मुझे लगता है एलिफेंटा आज के इंसान से एक बहुत ज़रूरी बात कहती होगी। तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है, लेकिन क्या तुम्हारे पास सुकून भी है? हमने बिल्डिंग्स को ऊंचा बना दिया है, लेकिन नजरिए को? हमने इंटरनेट फास्ट कर दिया है, लेकिन पेशेंस को? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है।
1: आज का मुंबई एम्बिशियस है, और एम्बिशन बुरी बात नहीं, लेकिन जब एम्बिशन इंसान को अंदर से खाली करने लगे तब रुकना जरूरी बनता है, और एलिफेंटा केव्स वही पॉज बटन है। समंदर के बीच एक आइलैंड, जैसे केओस के बीच एक साइलेंस। आज जब लोग एलिफेंटा जाते हैं तो सिर्फ हिस्ट्री नहीं देखते, वो अपनी थकान उतारने वहां जाते हैं।
0: कुछ लोग आर्किटेक्चर देखते हैं, और कुछ स्पिरिचुअलिटी, कुछ फोटोग्राफी, और कुछ लोग
1: बस खुद को।
0: बिल्कुल, अब हम लोग भी साथ में आप लोगों को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और एलिफेंटा केव्स भी हम लोग भी पहुंच गए हैं आपके साथ, वो देख रहे हैं। पेश करता हूं अब एक और गीत, और वो है, क्योंकि ट्रैवलिंग की बात हो रही है तो एलाही अच्छा रहेगा, है ना? ओके,
1: बहुत कूल।
0: स्टे ट्यून्ड, बी विद अस।

0: आप लोगों के साथ बना हुआ हूं मैं, आपका हमराज आरजे अभिनव, और साथ में है आरजे
1: आदित्य।
0: कभी नोटिस किया है कि पुरानी जगहों में आवाज धीरे हो जाती है, लोग बिना बोले ज्यादा समझने लगते हैं, शायद क्योंकि पुरानी दीवारें ईगो को छोटा कर देती हैं।
1: क्या बात है,
0: अपने अंदर समाहित कर लेती है ना, इतनी बड़ी होती है। और इसके बाद एलिफेंटा के पत्थर आप लोगों से कुछ कहते हैं, और उस पत्थर पर वक्त के निशान भी हैं, कहीं टूट फूट कहीं घिसावट, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़े हुए हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। आज के दौर में लोग थोड़ी क्रिटिसिज्म से टूट जाते हैं, थोड़ी फेलियर से रुक जाते हैं, एलिफेंटा के पत्थर शायद हमें देखकर कहते होंगे,
1: हमने सदियां देखी हैं, तूफान देखे हैं, बदलते युग देखे हैं, तुम तो एक सेटबैक से क्यों डर गए। क्या खूबसूरत लेसन है, स्ट्रेंथ का मतलब हमेशा आवाज नहीं होता, कभी कभी स्ट्रेंथ का मतलब होता है चुप रहकर भी टिके रहना। आज का इंसान वैलिडेशन ढूंढता है, लाइक्स, व्यूज, अप्रूवल्स, लेकिन एलिफेंटा की मूर्तियां बिना तालियों के भी महान है, क्योंकि असली ग्रेटनेस शोर से नहीं आती, असली ग्रेटनेस गहराई से आती है। और मुंबई ये शहर भी तो वैसे ही है, बहुत लोग यहां सपने लेकर आते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ टिक जाते हैं, और जो टिक जाते हैं वो कहानी बन जाते हैं।
0: बिल्कुल, एलिफेंटा भी एक कहानी है, परसिस्टेंस की, आर्ट की, फेथ की, और वक्त को हरा देने वाली कला की। आज के बच्चों को जब हम हेरिटेज के बारे में बताते हैं ना, तो सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स नहीं बताने चाहिए, स्पेशली उन्हें एहसास बताना चाहिए, यानी कि फीलिंग वहाँ पर जाकर क्या आप महसूस क्या कर रहे हो, उससे क्या आप महसूस कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, कि ये सिर्फ स्टोन्स नहीं है, ये ह्यूमन इमेजिनेशन का प्रूफ है। और शायद आज एलिफेंटा हमसे एक रिक्वेस्ट करती हो कि मुझे सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट मत बनाओ, मुझे महसूस करो, मेरी दीवारों पर नाम मत लिखो, मेरी खामोशी को समझो।
1: हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब हम अपनी विरासत बचाते हैं तब हम अपनी आइडेंटिटी बचाते हैं।
0: आते हैं आप लोगों के पास छोटे से प्यारे से ब्रेक के बाद।
2: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
3: इंटरनेट बैंकिंग,
2: मोबाइल बैंकिंग,
3: व्हाट्सएप बैंकिंग,
2: ईकेवाईसी,
3: एनईएफटी, आरटीजीएस,
2: आईएमपीएस,
3: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
2: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
3: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: तो आज का ये सेगमेंट सिर्फ एलिफेंटा पर नहीं है, ये हम पर भी है। हम क्या प्रिजर्व कर रहे हैं और हम क्या खो रहे हैं। आज दुनिया AI, ऑटोमेशन और स्पीड की बात कर रही है, लेकिन ह्यूमन टच, पेशेंस, साइलेंस, कॉन्टेम्पलेशन, ये सब धीरे धीरे रेयर होते जा रहा है। और तब एलिफेंटा जैसी जगह और भी इंपॉर्टेंट होती जाती है, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, कुछ जगहें इंसान को अंदर से रीसेट करने के लिए होती है।
1: क्या बात है, तो इन्हें फिलॉसफी वाली बात कर दी।
0: तो अब वक्त है कल का, यानी फ्यूचर का।
1: जैसा कि हम लोग कल आजकल में फ्यूचर लेकर आते हैं, अब हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं। सोचिए 100 साल बाद मुंबई कैसा होगा और एलिफेंटा। शायद बोट्स इलेक्ट्रिक होंगी, शायद होलोग्राम्स गाइड्स बन चुके होंगे, शायद दुनिया और डिजिटल हो चुकी होगी, लेकिन एक सवाल है, क्या तब भी इंसान सुकून ढूंढेगा? मुझे लगता है हाँ, और इसीलिए एलिफेंटा का फ्यूचर भी जरूरी है। हालांकि हमसे आज पूछा गया था कि भाई एलिफेंटा क्यों कहा जाता है, क्या मतलब है एलिफेंटा का, एलिफेंटा के मतलब के बारे में बताएंगे हमें आदित्य।
0: तो इसकी दो थियोरीज बोली जाती है, एक तो वहां पे जो पुर्तगाली लोग आए हुए थे एक्सप्लोरर्स, वहां पे उन्हें एक हाथी का एक स्टैचू दिखाई पड़ा एंट्रेंस पे ही जहां पे वो उतरे, तो उससे भी उन्होंने एलिफेंटा कह दिया। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उसका एक शेप जो है, वो जो टापू है उसका जो शेप जो है वो दूर से हाथी की तरह दिखता है।
1: हाथी की तरह दिखता है, बिल्कुल
0: जी हाँ।
1: और इसका ओरिजिनल नाम था वैसे घरापुरी, जिसको हम कहते हैं सिटी ऑफ केव्स, यानी कि गुफाओं का शहर। आइए आप लोगों से कुछ और बातें करते हैं। वापस वही बात कि टेक्नोलॉजी तो बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी बदलती रहे लेकिन इंसान अपनी रूट्स ना भूले। शायद कल की एलिफेंटा हमसे यही कहना चाह रही है, और इसलिए एलिफेंटा का फ्यूचर भी ज़रूरी है। आज क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं, समुंदर बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, फ्यूचर का सबसे बड़ा चैलेंज होगा प्रिजर्वेशन, नेचर को बचाना, हिस्ट्री को बचाना और इंसानियत को बचाना। वो शायद हमसे ये कहना चाहती है कि
0: तुमने

0: प्रगति तो कर ली, लेकिन धरती का ख्याल भी रखो, क्योंकि अगर प्रकृति नजर हो गई, वो अगर नाराज हो गई, तो तुम्हारे शहर भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे।
1: यानी कि फ्यूचर में शायद स्कूल के बच्चे वर्चुअल रियलिटी में एलिफेंटा देखें, लेकिन उम्मीद है कि असली हवा, असली समुंदर और असली पत्थर का एहसास कभी खत्म ना हो।
0: जी, क्योंकि डिजिटल दुनिया में इंसान को असली कनेक्शन तो चाहिए ही होगा, है? और हेरिटेज वही रियल कनेक्शन है। कल का मुंबई और भी फास्ट हो जाएगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ लोग कभी कभी स्लो होना नहीं भूलेंगे।
1: वही बोट का सफर, वो समुंदर की हवा, वो अंधेरी गुफाओं में घुसती हुई रोशनी, ये सब चीजें इंसान को ह्यूमन बनाए रखती हैं। फ्यूचर जनरेशन शायद हमसे यही पूछेगी कि तुमने हमें क्या दिया, और तब हमें कहना चाहिए,
0: हमने सिर्फ मॉल्स और फ्लाईओवर्स नहीं दिए, हमने तुम्हारी विरासत भी बचाई है।
1: करेक्ट।
0: एलिफेंटा का फ्यूचर हमारे हाथों में है। रिस्पेक्ट, केयर, अवेयरनेस, यही तीन चीजें किसी भी हेरिटेज को अमर बनाती है। और मुझे लगता है अगर एलिफेंटा केव्स आखिरी बार आज हमसे कुछ कहना चाहे तो शायद वो ये कहेंगी,
1: मैं सिर्फ पत्थर नहीं, मैं तुम्हारी ही कहानी हूं, मैं तुम्हारा ही अतीत हूं। मैं सिर्फ पत्थर नहीं, मैं तुम्हारी कहानी हूं, मैं तुम्हारा अतीत हूं, मैं तुम्हारा आईना हूं, और अगर तुमने मुझे संभाल कर रखा
0: तो मैं तुम्हारा भविष्य भी हूँ।
1: बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। आप लोगों के पास थे हम लोग मस्त मुंबई में, कल आज और कल में, लेकिन आएंगे अगला शो भी आप लोगों के पास। लेकिन अब बैक टू बैक कुछ गीत भेजता हूँ आप लोगों के पास, सुनाता हूँ आप लोगों को। रॉक ऑन।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: इसी म्यूजिकली यॉर्स पर आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे 107.1 एफएम रेनबो मुंबई पर, और अब लेकर आए हम लोग आप लोगों के बीच में शो नमस्ते भारत। मेरे साथ हैं आरजे
2: आदित्य
1: जी, हाँ, और सेगमेंट है

0: और अलोरा गुफाओं की जुबानी। भाई भारत है और भारत के अंदर मौजूद है नेचुरल जो एक्चुअली हमारी ब्यूटीज हैं, उस नेचुरल ब्यूटीज की हम बात करेंगे। नमस्कार भारत, प्रेम संस्कृति इतिहास और आत्मा की धरती को मेरा प्रणाम। आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत, मैं हूं आपका अमराज अभिनव, मेरे साथ आदित्य और अब अगली आवाज होगी उनकी।
1: तो भारत सिर्फ नक्शे पर बना एक देश नहीं, यह सभ्यताओं का एक ये सभ्यताओं की एक सांस है, ये पत्थरों में छिपी कविता है, यह उन हाथों की मेहनत है जिन्होंने हथौड़ा उठाकर इतिहास तराश दिया। आज हम चलेंगे महाराष्ट्र की उन अद्भुत गुफाओं तक जहां अंधेरा भी रोशनी की कहानी सुनाता है। आज बात होगी अजंता केव्स और एलोरा केव्स की, लेकिन आज हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे, आज हम उन गुफाओं की आवाज सुनेंगे जैसे वे खुद हमसे बात कर रही हो।
0: तो बस अब पेश करते हैं पहले ये गीत ख्वाबों के परिंदे और आते हैं आप लोगों के पास वापस। स्टे ट्यून्ड बी विद अस 107.1 FM रेनबो मुंबई, म्यूजिकली योर्स।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.
1: बने हुए हैं आप लोगों के साथ, मैं और मेरे साथ हैं आरजे आदित्य, और स्पेशली अब हम लोग बातें करेंगे आप लोगों से भाई, जिसकी हम लोग बातें कर रहे थे और वो थी एलिफेंटा केव्स। जी हाँ, यानी कि एलिफेंटा केव्स के बाद अजंता केव्स है एलोरा केव्स। कल्पना कीजिए सदियों पुरानी गुफाएं, पत्थरों में उकेरी गई बुद्ध की शांति, कैलाश मंदिर की विराटता, दीवारों पर रंग और उन रंगों के पीछे छुपी हुई इंसानी आत्मा। और तभी मानो अजंता धीरे से कहती हो,
2: मैं अंधेरी जरूर हूं लेकिन मेरे भीतर ज्ञान का सूरज उगता है। वाह क्या बात है अजंता, जहां दीवारें बोलती हैं, जहां चित्र सिर्फ रंग नहीं ध्यान है, जहां हर आकृति में करुणा सांस लेती है। कभी यहां बौद्ध भिक्षु आया करते थे, ध्यान होता था, मौन होता था, और उस मौन में शायद पूरी दुनिया की सबसे गहरी आवाज छिपी थी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
3: आप लोगों के बीच बनाऊं मैं आपका हमराज आरजे अभिनव और मेरे साथ हैं आरजे
4: आदित्य।
3: जी हाँ, और बात कर रहे थे हम लोग अजंता और एलोरा केव्स की। भारत हमको जहाँ से प्यारा है, भारत है ही इतना खूबसूरत कि उसके बारे में जितनी बातें की जाए कम है। नेचुरल ब्यूटी तो देखने को मिलती ही है।
4: जरूर।
3: सच ये है कि अजंता, जैसे आज भी कहती होगी, तुम्हारी दुनिया तेज हो गई है लेकिन शांति आज भी धीरे चलती है। और सच यही है कि आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन सुकून कम होता जा रहा है। अटेंशन स्पैन और कम हो गया है। शायद इसलिए जब कोई अजंता की गुफा में जाता है तो उसे सिर्फ कला नहीं दिखती है, उसे अपने भीतर का शोर भी सुनाई देने लगता है एक तरह से। बल्कि मैं तो कहूँ आदित्य, आज का तो शो ही गुफाओं पर हो गया भाई। और कहते हैं ना कि इंसान अपने दिल की गुफाओं में भीतर भी जाता है तो बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं। उन दीवारों पर बने चित्र, राजकुमार, बुद्ध, नृत्यकियाँ, राजदरबार, भावनाएं, इतनी सदियाँ बीत गई लेकिन रंग अभी भी जिंदा है। जैसे अजंता हमसे कह रही हो,
4: जिस कला में आत्मा होती है उसे समय मिटा नहीं सकता। और फिर कुछ दूरी पर खड़ी है एलोरा, विशाल, अडिग, जैसे पहाड़ ने खुद अपना सीना खोलकर मंदिर बना दिया हो। एलोरा जैसे गर्व से कहती है,
3: मैं सिर्फ पत्थर नहीं हूं, मैं इंसानी हौसले का प्रमाण हूं। कैलाश मंदिर, इसकी बात हम जरूर करेंगे लेकिन पहले लेकर आएंगे आप लोगों के पास एक प्यारा सा गाना।

0: मैं बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ, आपका हमराज। और शो तो वही है, नमस्ते भारत, जिसमें है भारत हमको जान से प्यारा है। साथ में है मेरे आरजे
1: आदित्य।
0: बात चल रही थी अजंता और एलोरा केव्स की, और मैंने बात छेड़ी थी कैलाश मंदिर की।
1: एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया, जरा सोचिए। आज मशीनों के दौर में भी ऐसा काम कल्पना जैसा लगता है।
0: और मैं एक बात और बता दूंगा देते हैं, बीच में थोड़ा सा ठोकूंगा, वो
1: जरूर जरूर कोई बात
0: के कैलाश के बारे में लोग कैलाशा टेंपल समझते हैं, वो एक अलग है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा अलग है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था, इसको हम कैलाशा बोलते हैं, जो अजंता एलोरा गुफाओं में ही है, बगल की समाहित है, जिसको हम कैलाश टेंपल बोलते हैं, जिसको हम कैलाशा कहते हैं प्यार से। तो जो आदित्य ने कहा ही था कि भाई आज मशीनों के दौर में भी ऐसा लगता है ये काम कल्पनाओं जैसा, जैसे सदियों पहले लोगों ने लेकिन इसे कर दिखाया था। एलोरा की सबसे खूबसूरत बात क्या है जानते हैं? ये सिर्फ एक धर्म की कहानी नहीं है, ये बौद्ध गुफाएं भी हैं, यहाँ हिंदू मंदिर भी हैं, यहाँ जैन कला भी है। एक ही जगह तीन धाराएं, तीन आस्थाएं और एक संदेश। जैसे हमने एलिफेंटा केव्स में बात की थी ना, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति ट्रिनिटी, बिल्कुल वैसा ही। हाँ, आप एलोरा के बारे में कुछ बोल रहे थे।
1: तो मानो एलोरा पूरी दुनिया से कह रही हो, रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल इंसानियत की ही होनी चाहिए।
0: वाह खूबसूरत।
1: क्या खूबसूरत सोच थी ना हमारे पूर्वजों की। आज लोग छोटी छोटी बातों पर बट जाते हैं, लेकिन सदियों पहले पत्थरों में एकता तराशी जा रही थी। भारत की यही तो खूबसूरती है, यह विविधता लड़ती नहीं साथ जीती है।
0: कहते हैं ना वो कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी, या यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो दोनों ही बातें बिल्कुल एक साथ हो जाती
1: है। तो ये जो अजंता की शांति है और एलोरा की शक्ति है, दोनों मिलकर भारत की आत्मा बन जाते हैं।
0: बल्कि मैं तो कहता हूँ एक चीज और हो जाती है, शांति शक्ति, और उसी के साथ मिल जाती है भक्ति।
1: क्या बात है, क्या बात है। एक ध्यान सिखाती है, दूसरी दृढ़ता। एक कहती है अपने भीतर जाओ, और दूसरी कहती है अपनी भीतर की शक्ति पहचानो।
0: और शायद दोनों मिलकर हमसे कहती हैं कि तुम आधुनिक जरूर बनो लेकिन अपनी जड़ों से रिश्ता मत तोड़ो। और अब अगला गीत लेकर आते हैं आप लोगों के पास, तू कोई और है ये जानता है तू।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: बने हुए आप लोगों के साथ, मैं आरजे बने और मेरे साथ मैं आरजे
1: आदित्य
0: जी हाँ, और हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों से अजंता अलोरा केव्स की। आज का भारत चांद तक पहुंच रहा है, एआई बना रहा है और बन रहा है, नई ऊंचाइयां छू रहा है और ये गर्व की बात है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है अपनी विरासत को याद रखना, क्योंकि जो देश अपना अतीत भूल जाता है उसका भविष्य भी धीरे धीरे खोखला होने लगता है।
1: कभी गौर कीजिए, इन गुफाओं को बनाने वालों ने उनके नाम जो है वो शायद इतिहास में कहीं लिखे ही नहीं हो। कोई सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त, कोई अवार्ड शो नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया जिसे

0: पूरी दुनिया आज सलाम करती है।
1: भाई यही असली कला है आदित्य, जहाँ कलाकार अपने नाम से बड़ा काम छोड़ जाता है।
0: बिल्कुल, अजंता जैसे मुस्कुराकर कहती हो,
1: मैंने इंसान को ध्यान करना सिखाया, और अलोरा कहती हो,
0: मैंने इंसान को असंभव को संभव करना सिखाया।
1: दोस्तों, भारत सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं है, भारत आध्यात्मिक शक्ति भी है। यहाँ मंदिर हैं, मस्जिदें हैं,
0: मठ हैं, गुफाएं हैं, और हर जगह एक ही बात छिपी है,
1: इंसान
0: को बेहतर बनना है।
1: बेहतर बनने के साथ साथ एक और चीज करते हैं हम दोनों, फिर कुछ और गीत पेश करते हैं। और कहते हैं ना भाई, जोश भी है और होश भी है, तो यानी अनुभव के साथ जोश मिल जाए तो मजा आ जाता है। तो हम ट्रेडिशनल को आप लोगों के साथ लेकर चल रहे हैं, मॉडर्निज्म में मिला रहे हैं, इसलिए गाना भी लेकर आए हैं, दिल थकने दो।
0: वाओ।

0: आप लोगों के बीच बना हुआ हूँ मैं आपका हमराज आरजे अभिनव और मेरे साथ है आरजे
1: आदित्य।
0: जी हाँ, 107.1 एफएम रेनबो मुंबई पर हम लोग हैं आप लोगों के साथ। नमस्ते भारत में, भारत हमको जहाँ से प्यारा है। जी हाँ, वो तो है ही, और साथ साथ भारत उतना खूबसूरत भी है। हम बात कर रहे थे अजंता और एलोरा केव्स की। आज जब दुनिया तनाव में है, तब भारत की भारत ही एक ऐसा है, भारत की एक विरासत ऐसी जो पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखा सकती है, शांति का, संतुलन का, सह अस्तित्व का, यानी कि साथ में रहने का। और सच कहूं, जब आप अजंता और अरोरा को देखते हैं तो गर्व अपने आप महसूस होता है, लगता है
1: हाँ ये मेरा भारत है, ये भारत जहां पत्थर भी कविता लिखते हैं, जहां पहाड़ भी प्रार्थना बन जाते हैं, और जहां कला सिर्फ सजावट नहीं साधना होती है। और शायद आज ये गुफाएं हम सबसे आखिरी बात कहना चाहती है,
0: हमें सिर्फ देखने मत आओ, हमें समझने आओ, क्योंकि हम तुम्हारा इतिहास ही नहीं, तुम्हारी पहचान भी हैं। कितनी गहरी बात है।
1: हम अक्सर विदेशों की तरफ
0: जाते भी हैं, विदेशों की तारीफ भी करते हैं। बिल्कुल सही कहा देते हैं
1: जी। हाँ। और लेकिन अपने देश की विरासत को देखने का हमें समय ही नहीं मिलता।
0: सही बात है।
1: कभी निकालिए, कभी इन गुफाओं के सामने कुछ मिनट चुपचाप खड़े रहिए। आपको महसूस होगा इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास सांस लेता है।
0: और इसके बाद अब क्या कहना है वो हम आप लोगों से आकर मिलेंगे, कहेंगे, लेकिन बीच बीच में कई सारे प्यारे प्यारे से गीत आप लोगों के पास लेकर आएंगे। और ये है पहला, एक जुनून।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: वेलकम बैक। और हम लोग हैं आप लोगों के बीच में, हूँ आरजे अपना, वो मेरे साथ है आरजे
1: आदित्य।
0: जी हाँ, और तभी अब दिल से एक ही बात निकलती है कि भारत हमको जहाँ से प्यारा है। अब सुन रहे थे नमस्ते भारत। आज का सफर था अचंता और अलोरा की गुफाओं की जबानी। अपने देश से प्यार कीजिए, अपनी विरासत को बचाइए, क्योंकि यही हमारी असली पहचान है। नमस्कार भारत। और स्पेशली अगर अपने फीडबैक आप लोग हमें देना चाहते हैं तो FM रेनबो मुंबई के नाम से हम लोग हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, और AIR_ मुंबई के नाम से हम लोग हैं ट्विटर पर, जो कि है अब X। मेरा नाम है आरजे अभिनव पराशर, साथ में है आरजे
1: आदित्य।
0: हम लोग आप लोगों को मिल ही जाएंगे। और अगली आवाज होगी ममता की। जी हाँ, बिल्कुल सही, मतलब नाम याद रहते हैं मुझे। तो आप लोगों के पास लेकर आता हूं बैक टू बैक कुछ प्यार प्यारे से गीत। और स्टे ट्यून्ड विद अस 107.1 FM रेनबो मुंबई, म्यूजिकली
1: योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह के ठीक 11 बज चुके हैं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के समाचारों की सुर्खियों पर। क्वाड विदेश मंत्री की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की विदेशी मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी बैठक में भाग ले रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा होगी। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इबोला को लेकर SOP जारी की है। यह कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया है। युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले अनिवार्य रूप से यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना और एकत्रित करना होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। समाचारों में आगे है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। समाचारों के अंत में खेल जगत से समाचार। IPL क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे IPL 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो की मुंबई प्रसारण सेवा के साथ।
2: आकाशवाणी FM रेनबो।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम ब्रेक फ्री। और ब्रेक फ्री में मैं आपको इस गर्मी से भले ही ब्रेक फ्री ना कर सकूं, लेकिन आपके लिए लाई हूं कुछ खूबसूरत से गीत जो आपको आपकी बोरियत से डेफिनेटली ब्रेक फ्री कर देंगे, और कुछ ऐसी बातें जो आपको बताएंगे कि आप भी किस तरह से अपने लिए एक अलग रास्ता चुन सकते हैं उन रीतियों से, उन रिवाजों से, या उन बातों से अपने आप को ब्रेक फ्री कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: eKYC,
2: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
2: कॉस्मोस रूपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: UPI जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: बाकी दादर स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर भेट होई ती पाय रस्त्यांचीच। रानडे मार्ग तर अस्तित्वातच नव्हता। टिळक पूल नुकताच तयार झाला होता, पण त्या परिसरात तोपर्यंत तुरळक लोकवस्तीच असल्यानं त्यावर रहदारी अशी ती नव्हतीच।
4: काठेवाडी वाघरी समाज आणि गोल्फा देवी ह्यांचा नेमका संबंध शोधताना मिळालेली माहिती गोल्फा देवी म्हणजेच शाकंभरी आहे हे सिद्ध करणारी आहे।
5: काय ऐकली कधी तुम्ही ही कथा सात बेटांची।
6: श्रोतेहो, नितीन साळुंखे यांच्या अज्ञात मुंबई या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन अवश्य ऐका दररोज सकाळी 8:15 107.1 FM रेनबो आणि सकाळी 9:00 अस्मिता वाहिनीसह न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर।

कहते हैं अगर आपके इरादे नेक हों और आप सबके लिए सिर्फ अच्छा सोचते हों और अगर आप सच में दिल से किसी का अच्छा करना चाहते हैं तो इंसान भी पंखों को घर दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये पंखों को घर देना क्या होता है? भाई यही तो है हमारे आज के ब्रेक फ्री के हीरो। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो आपको ये बताएगी अगर इरादा नेक हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर सच्चा दृढ़ निश्चय इंसान हो जो किसी के लिए सच्चे दिल से कुछ करना चाहता हो तो पक्षी, जानवर, इंसान किसी के लिए भी कुछ भी किया जा सकता है। तो आज की इस कहानी के लिए हम आपको लेकर चलेंगे सीधा पंजाब, जहां पर एक शख्स ने बहुत अनोखा काम किया है जो शायद हम सोच भी नहीं सकते, या फिर शायद सोचते हैं तो करते नहीं हैं, या फिर अगर करते हैं तो कई बार वो अननोटिस चला जाता है, या फिर उस चीज़ के लिए हमें रिवॉर्ड्स नहीं मिलते तो हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन हर चीज़ रिवॉर्ड्स के लिए नहीं की जाती, कुछ चीज़ सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए भी की जाती है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको उस जगह जहाँ पर इस इंसान ने किया है कुछ खास, लेकिन इस गीत के उस पार।

तो भाई हर चीज की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, जब प्रॉब्लम दिखती है तो लोग उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ जब पेड़ों की कटाई के कारण पक्षी बेघर हो रहे थे, तब इस समस्या को एक इंसान ने महसूस किया। महसूस कीजिए कि कैसा लगता होगा जब आपको आपके घर से निकाल दिया जाता है, कैसा लगता है जब आपके सामने आप अपने घर को टूटता बिखरता देखते हैं। पक्षियों में भी दिल तो होता है ना, तकलीफ तो होती है, लगता तो है उन्हें भी कि कुछ हो गया है। तो बस उनकी इस तकलीफ को समझा एक शख्स ने जो पंजाब से है, संदीप धौला, जो एक जाने माने पर्यावरण प्रेमी हैं और कई सालों से वो बेजुबान पक्षियों के लिए घोंसले बनाने का नेक काम कर रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने अब तक 80,000 से ज्यादा घोंसले लगाए हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ एक है, पक्षियों को सुरक्षित जगह देना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
3: बाकी दादर स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर भेट होई ती पाय रस्त्यांचीच। रानडे मार्ग तर अस्तित्वातच नव्हता। टिळक पूल नुकताच तयार झाला होता, पण त्या परिसरात तोपर्यंत तुरळक लोकवस्तीच असल्यानं त्यावर रहदारी अशी ती नव्हतीच।
4: काठेवाडी वाघरी समाज आणि गोल्फा देवी यांचा नेमका संबंध शोधताना मिळालेली माहिती गोल्फा देवी म्हणजेच शाकंभरी आहे हे सिद्ध करणारी आहे।
5: काय ऐकली कधी तुम्ही ही कथा सात बेटांची।
6: श्रोते हो, नितीन साळुंखे यांच्या अज्ञात मुंबई या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन अवश्य ऐका दररोज सकाळी 8:15 107.1 FM रेनबो आणि सकाळी 9:00 अस्मिता वाहिनी सह न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍप वर।

तो जब से कुछ ही देर पहले आपने गाना सुना, वो बिल्कुल इस बात को सही दर्शाता है कि खुदा ने किसी ना किसी के लिए, हर किसी के लिए, किसी ना किसी को डेफिनेटली बुलाया है, बनाया है, और कुछ तो उनसे राबता होता है जो हमारा दिल उनसे जुड़ जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ संदीप धौला जी के साथ, जब उन्होंने ये महसूस किया कि पक्षियों के पास ना तो कोई डॉक्टर होता है, ना ही कोई इंसान उन्हें फिल्टर लगाकर पानी पिलाता है। हम तो बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, अगर पक्षी बीमार होते हैं तो वो क्या करते हैं? कभी कभी तो पक्षी सिर्फ दर्द में तड़प कर चले जाते हैं इस दुनिया से। और इसी बात को ख्याल में रखते हुए, इसी चिंता के साथ उन्होंने पिछले कई सालों से इन बेजुबान परिंदों के लिए आशियाना बनाने का निश्चय किया। और इसकी शुरुआत तब हुई जब उन्होंने अपना पक्का मकान बनाना शुरू किया। उन्होंने ये महसूस किया कि धीरे धीरे पक्षी घट रहे हैं। तब उनके गांव के बुजुर्गों से जब उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो रहा है, ये पक्षी ऐसे कम क्यों हो रहे हैं, तो तब कुछ बुजुर्गों ने बताया कि कच्चे घरों में पक्षी अक्सर आके अपना घोंसला बना लिया करते थे। मैंने मिट्टी के घर अगर आपने देखे हो, पुराने ज़माने में होते थे, तो कई बार वहाँ पे ज़रा से एक छोटे से होल में भी कई बार जो है चिड़िया, छोटी सी चिड़ैया, गोरैया जिसको कहते हैं, वो आके अपना घोंसला बना लेती थी। कई बार वहाँ पे अंडे देती थी, उसमें से छोटी छोटी सी चिड़ियाएँ निकलती थी, तो ऐसा होता था। लेकिन जब से लोगों ने पक्के घर बनाने शुरू किए हैं, जो पक्षी हैं उनकी ब्रीडिंग करने की जगहें कम हो गई हैं, पेड़ कट रहे हैं, इसकी वजह से उनके घोंसलों में घोंसला बनाने की जो जगह है वो भी कम हो गई है। और कई तो पक्षी ऐसे हैं जो अब घोंसला बनाने की मेहनत भी नहीं करते हैं, आलसी हो गए हैं, या फिर ये कह लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो पक्षियों की जो प्रजाति है उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो इस चिंता को, इस प्रॉब्लम को देखते हुए संदीप जी ने की इस नेक काम की शुरुआत। और उन्होंने कहा कि अगर वो पक्षियों के लिए घोंसले बनाएं तो क्या पक्षी आके उसमें रहेंगे? क्या पक्षी अपना बसेरा उन घरौंदों में सजाएंगे जो वो बना रहे हैं? और फिर इन्होंने शुरू की अपनी कोशिश।

कई लोगों का ये मानना था कि जिस हिसाब से वो पक्षियों के लिए घोंसले बना रहे हैं, पक्षी तो जो रहे खुचे मतलब बचे खुचे जो पक्षी हैं वो खुद भी अपना घोंसला बनाना छोड़ देंगे और उनमें और ज्यादा आलस आ जाएगा कि हमें तो रेडीमेड मिल रहा है, हम क्यों करें। लेकिन फिर भी लोगों से ताने मिलने के बाद भी, लोगों की सलाह मिलने के बाद भी, उन्होंने अपना ये इरादा नहीं छोड़ा और पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए, उन्हें तिनके मिल सकें इसलिए वो ऐसे झाड़ी वाले पौधे लगाते थे, उन्होंने पेड़ लगाने शुरू किए आसपास ताकि जो पक्षी है उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिल सके। और उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि पंजाब में उनके गांव में अब हर घर के खंभे पर एक पक्षी का घोंसला बना हुआ है और पक्षियों की संख्या भी कई गुना बढ़ चुकी है। अगर ये छोटे छोटे से चेंजेस हम भी अपनी लाइफ में लेकर आए, हम भी अपनी जिंदगी में लेकर आए और इन्हें अप्लाई करें, तो डेफिनेटली हम भी समाज में, प्रकृति में, एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस लेकर आ सकते हैं। आज हम सब गर्मी की मार झेल रहे हैं। एक वक्त था जब गर्मी इतनी नहीं सताती थी हमें, क्योंकि तब हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे, फलदार वृक्ष थे, बहुत कुछ ऐसा था जो हमें गर्मी से बचाने में काम आता था। लेकिन बढ़ती जरूरतों के साथ साथ पेड़ कम होते चले गए। हमने पेड़ कम तो किए लेकिन हमने पेड़ लगाने भी छोड़ दिए। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आज अगर सड़कों के किनारे पेड़ लगे हों तो आपको धूप में, कड़ी धूप में चलना ना पड़े। आज अगर आपने जगह जगह पर पानी के इंतजाम किए हों तो लोगों को प्यासा ना रहना पड़े। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए हम इंसान भी जिम्मेदार होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। तो किसी एक को तो पहल करनी पड़ेगी, तो वो पहल हम ही क्यों ना करें। अगर हम हर वक्त बस यही सोचते रहेंगे कि अरे यार वो करेगा तो मैं साथ में कर लूंगा, तो शायद कुछ ना हो। हर किसी को एक पहल किसी भी चीज के लिए करनी जरूरी है, क्योंकि पहल करने वाला शख्स हमेशा अकेला होता है और फिर जैसे जैसे सफर चलता जाता है कारवां बनता जाता है और सफलता तो अपने आप आ जाती है। 107.1 FM रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम ब्रेक फ्री, और आपको कमाल की कौड़ी आज मैंने दी है। जी हाँ, पहला कदम उठाइए, बाकी कदम अपने आप रास्ते पर चलते चले जाएंगे।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: बाकी दादर स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर भेट होई ती पाय रस्त्यांचीच, रानडे मार्ग तर अस्तित्वातच नव्हता। टिळक पूल नुकताच तयार झाला होता, पण त्या परिसरात तोपर्यंत तुरळक लोकवस्तीच असल्यानं त्यावर रहदारी अशी ती नव्हतीच।
7: काठेवाडी वाघरी समाज आणि गोल्फा देवी यांचा नेमका संबंध शोधताना मिळालेली माहिती

तो बस मैं तो ये कहूंगी कि कुछ तोड़िएगा नहीं, कुछ जोड़ने के बारे में सोचिए। बिल्कुल इसी शख्स की तरह जिसने अपने बारे में तो सोचा ही सोचा, लेकिन अपने साथ साथ उन हजारों पक्षियों के लिए सोचा जिनके बारे में शायद कोई नहीं सोचता है। पक्षियों के लिए घोंसले लगाए, उन्हें रहने की जगह दी, उनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट किया। संदीप धौला जी, आपको सलाम है। तो बस ऐसी ही छोटी छोटी जो शुरुआत है ना, वो एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ ले लेती हैं एक पल के बाद, एक लम्हे के बाद। इनिशियली शुरू शुरू में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर जब उन चीज़ों का रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल तो ये रिजल्ट आया है कि ठीक 12 बजे होंगे समाचार, और समाचारों के उस पार म्यूजिक कैफे में मैं रहूंगी आपके साथ, लेकर बातें कुछ खास। तो बस 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से मेरे यानी ममता सहगल के साथ ही रहिएगा, क्योंकि आपको सुनवा रही हूँ कुछ खूबसूरत से नगमे, नगमों के उस पार बातें बेशुमार। बने रहिए हमारे साथ।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, 107.1 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। दोपहर के ठीक 12 बज चुके हैं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के समाचारों की सुर्खियों पर। देश में पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी के दाम में आज 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण यह बढ़ोतरी की गई है। पिछले 11 दिनों में सीएनजी की कीमतों में यह 4थी बार बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। यात्रा के दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और कई स्थानों का दौरा करेंगी। आज शाम को राष्ट्रपति गैंगटॉक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। समाचारों में आगे है, महाराष्ट्र सरकार ने वर्ली जेटी के विकास में तेजी लाने और वहां हेलीपैड विकसित करने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र के मत्स्य और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने कल कहा कि मुंबई में जल परिवहन, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और पर्यटन को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ली जेटी के विकास कार्य में तेजी लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समाचारों के अंत में खेल जगत से समाचार। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत करते हुए विंसेंट कीमर के खिलाफ एक कड़े और तनावपूर्ण मैराथन मुकाबले के बाद जीत हासिल की और आर प्रज्ञानंद ने वेस्ली सो को हराया। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पहले दौर में ही हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो की मुंबई प्रसारण सेवा के साथ।

गुड आफ्टरनून इस चिलचिलाती गर्मी में आपको ठंडक का एहसास देने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं और आज म्यूजिक कैफे में मैं आपके लिए चुन चुन कर कुछ गीत लेकर आई हूँ। कुछ ऐसे गीत हैं जो अलग सिचुएशन में हैं, अलग सिंगर ने गाए हैं, लेकिन उनकी धुन सेम है, राग अलग है, धुन सेम है। ऐसे कुछ गीत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और अगर आप भी चाहते हैं उन गीतों का मजा लेना तो आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ रहना है यही इसी फ्रीक्वेंसी पर 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूँ ममता सहगल आपके साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: बाकी दादर स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर भेट होई ती पाय रस्त्यांचीच, रानडे मार्ग तर अस्तित्वातच नव्हता। टिळक पूल नुकताच तयार झाला होता, पण त्या परिसरात तोपर्यंत तुरळक लोकवस्तीच असल्यानं त्यावर रहदारी अशी ती नव्हतीच।
4: काठेवाडी वाघरी समाज आणि गोल्फा देवी यांचा नेमका संबंध शोधताना मिळालेली माहिती गोल्फा देवी म्हणजेच शाकंभरी आहे हे सिद्ध करणारी आहे।
5: काय ऐकली कधी तुम्ही ही कथा सात बेटांची।
6: श्रोते हो, नितीन साळुंखे यांच्या अज्ञात मुंबई या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन अवश्य ऐका दररोज सकाळी 8:15 107.1 FM रेनबो आणि सकाळी 9 वाजता अस्मिता वाहिनी सह न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍपवर।

वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ। और आज मैं म्यूजिक कैफे में आपके लिए ढूंढ कर लाई हूं कुछ ऐसे गीत जिनकी ट्यून सेम है, राग थोड़ा अलग है, अलग अलग सिंगर्स ने अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग फिल्मों की सिचुएशन में ये गीत गाए हैं, लेकिन जब आप इन्हें एक साथ सुनेंगे तब आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं ये जो गीत है ना वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, चाहे फिर वो 1985 की फिल्म सागर हो, या फिर 1966 में आई फिल्म ममता हो, या फिर 1951 की फिल्म नौजवान हो। इनके कुछ गाने ऐसे हैं जब आप इन्हें सुनते हैं तो आपको समझ आता है कि ये कहीं ना कहीं जब आप इन्हें महसूस करते हैं तो आप फील करेंगे कि हाँ यार इसकी धुन तो सेम है। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे ही कुछ गाने सुनाने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं, अब क्योंकि सागर फिल्म के गीत की बात हुई है तो आइए इसकी इसके जो खूबसूरत गीत था, जो सबसे ज़्यादा, वैसे तो इसके सारे गाने बहुत पसंद किए गए थे, लेकिन एक गीत था जो बहुत पसंद किया गया था और यही वो गीत है जिससे मिलते जुलते बहुत सारे गीत हैं। इनफैक्ट अगर हम ये कहें कि ये गीत नौजवान के गीत से मिलता जुलता है तो फिर इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि नौजवान 1951 में आई थी, फिर आई थी ममता, फिर आई थी सागर, और इसके बीच में भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनके गाने इस गीत से कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सागर फिल्म के इस गीत के साथ।

तो ये थे वो दो गाने जिनकी धुन, इनफैक्ट अगर आप स्टार्टिंग की धुन की अगर आप बात करें तो वो बहुत हद तक एक जैसी है। सागर किनारे अगर तुम ना होते, तो इसी धुन के ऊपर, हालांकि राग अलग हैं गानों में और आगे चल के भी धुन काफी बदल जाती है, इन्हीं गानों, इस जो धुन है, ये टिपिकल जो धुन है, इसके ऊपर

रहे हम, तो ये जो गाने हैं, हालांकि मैं बहुत बुरा गाती हूँ लेकिन ये जो गाने हैं इनकी जो धुन है, जब आप इन्हें ध्यान से सुने और अगर आपको म्यूजिक की नॉलेज है या फिर अगर आप थोड़ा सा रिसर्च भी करें, तब भी आपको पता चलेगा कि कैसे ये जो है एक ही धुन पर ये गाने हैं, इनकी शुरुआती लाइन जो है, कई गानों का मुखड़ा जो है वो एक जैसा बनाया गया है। नौजवान का जो गाना था वो लता जी की आवाज़ में था, जिसे साहिर साहब और एस डी बर्मन जी ने क्रिएट किया था। एंड देन राकेश रोशन जी और राजेश रोशन जी के जो पिताजी हैं रोशन साहब, उन्हें ये धुन बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने 1954 में एक फिल्म आई थी चांदनी चौक, उसमें इसके गीत इस धुन को जो है इस्तेमाल करके एक गीत बनाया था, जिसे आशा जी की आवाज़ मिली थी और जिसके बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी जी ने। और उन्होंने जो है इस ओरिजिनल धुन के लिए एस डी बर्मन जी को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी दिए थे और उनसे परमिशन भी ली थी इस गाने को अपने तरीके से रिक्रिएट करने के लिए, इस धुन को। और जो 1954 की फिल्म थी उसका ये गीत था, तेरा दिल कहाँ है, चांदनी चौक फिल्म से ये था। इसके बाद में 1952 में भी जो है इस गीत को कुंजुम पुवारे के नाम पुरावे इस नाम से जो है इस गीत को रिलीज किया गया था, जिसे एमएल वसंता कुमारी ने गाया था। ये तमिल फिल्म के लिए यूज किया गया था। यही नहीं, मलयालम सिंगर ने भी इसका अपना वर्जन रिकॉर्ड किया था, तिंगल केनन गन के नाम से ये गाना हुआ था, जो 50s में आया था। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे लोग संगीत प्रेमी बनते गए, म्यूजिक डायरेक्टर्स आते गए, तो इस फिल्म के बहुत सारे वर्जन बने। इन सभी वर्जन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मैं आपको वो दो गीत सुनाऊंगी जिनकी मैं अभी बात कर रही थी। जरा जरा आप सुनिएगा ध्यान से, फिर आपको रियलाइज होगा कि जो मैं कह रही हूँ वो क्या है। ठीक है,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बाकी दादर स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर भेट होई ती पाय रस्त्यांचीच। रानडे मार्ग तर अस्तित्वातच नव्हता। टिळक पूल नुकताच तयार झाला होता, पण त्या परिसरात तोपर्यंत तुरळक लोकवस्तीच असल्यानं त्यावर रहदारी अशी ती नव्हतीच।
5: काठेवाडी वाघरी समाज आणि गोल्फा देवी ह्यांचा नेमका संबंध शोधताना मिळालेली माहिती गोल्फा देवी म्हणजेच शाकंभरी आहे हे सिद्ध करणारी आहे।
6: काय ऐकली कधी तुम्ही ही कथा सात बेटांची।
7: श्रोते हो, नितीन साळुंखे यांच्या अज्ञात मुंबई या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन अवश्य ऐका दररोज सकाळी 8:15 107.1 FM रेनबो आणि सकाळी 9:00 अस्मिता वाहिनी सह न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍपवर।

0: एक गीत न जाने कितने गीतों की इंस्पिरेशन बन जाता है, और फिर जो गीत और संगीत होता है वो ना भाषा देखती है ना वो दायरे देखती है, वो बस बन जाता है और लोगों के दिल में बस जाता है, लोगों के दिल में छप जाता है। 1959 में एन दत्ता ने इस ट्यून को थोड़ा सा ट्वीक किया और फिर इसे जालसाज इस फिल्म के लिए यूज़ किया, जहाँ पर किशोर दा ने इसे गाया था आशा जी के साथ, और लिरिक्स थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब के, प्यार का जहां हो, ये है गीत के बोल। तो अगर आपको वक्त लगे तो आप इस गीत को डेफिनेटली जो है सुन सकते हैं, प्यार का जहां हो जालसाज से, और मुझे बताइएगा कि क्या जो मैं कह रही हूं वो बात सही है या नहीं। और ऐसा ही जो है एक और संगीतकार ने जो है किया था, मदन मोहन जी ने इसे 10 साल बाद 1964 में इसके टेम्पो को थोड़ा सा बढ़ाकर, थोड़ा सा इसे एक अलग देकर, हालांकि मेन धुन जो थी वो यही थी, राग थोड़ा बहुत बदल गया था, लेकिन इसे जो है वापस से रिक्रिएट किया गया था। रफ़ी साहब ने इसे गाया था और राजा मेहंदी अली खान साहब ने इसे लिखा था, और ये गीत इस्तेमाल हुआ था फिल्म आपकी परछाइयां में, जहां इसे धर्मेंद्र जी के ऊपर फिल्माया गया था। तो आइए आपको सुनवाती हूँ यही गीत जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रही थी, और यही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारी फिल्में हैं आगे जिसमें इसी धुन को इस्तेमाल करके जो है संगीत बनाया गया था, गीत बनाए गए थे, गीत गाए गए थे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के उस पार बातें बेशुमार, बने रहिए हमारे साथ।
1: बाकी दादर स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर भेट होई ती पाय रस्त्यांचीच, रानडे मार्ग तर अस्तित्वातच नव्हता, टिळक पूल नुकताच तयार झाला होता, पण त्या परिसरात तोपर्यंत तुरळक लोकवस्तीच असल्यानं त्यावर रहदारी अशी ती नव्हतीच।
2: काठेवाडी वाघरी समाज आणि गोल्फा देवी ह्यांचा नेमका संबंध शोधताना मिळालेली माहिती गोल्फा देवी म्हणजेच शाकंभरी आहे हे सिद्ध करणारी आहे।
3: काय ऐकली कधी तुम्ही ही कथा सात बेटांची।
4: श्रोतेहो, नितीन साळुंखे यांच्या अज्ञात मुंबई या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन अवश्य ऐका दररोज सकाळी 8:15 107.1 FM रेनबो आणि सकाळी 9 वाजता अस्मिता वाहिनीसह न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

और यही नहीं, 1976 में आली बर्मन साहब ने इसे फिर से थोड़ा सा अलग एक धुन में क्रिएट करके इसका एक और वर्जन बनाया, जिसे फिर से एक बार गाया था लता मंगेशकर जी ने और रफ़ी साहब ने, और इसे मजरू साहब ने लिखा था, और ये इस्तेमाल किया गया था फिल्म बंडलबाज के लिए, नगमा हमारा। टाइम मिले तो ज़रूर सुनिएगा। अब मेरे पास जो है थोड़ी वक्त की कमी है, इसलिए मैं बहुत सारे ये सारे गीत आपको नहीं सुना सकती हूँ। और 1981 में इसे फिर से जो है इस धुन को इस्तेमाल किया गया था, हमें रस्तों की ज़रूरत नहीं इस गीत में, और फिल्म का नाम था नरम गरम, जिसमें आशा जी की आवाज़ थी और इसके बोल लिखे थे कवि योगेश जी ने। और इसके साथ में इसी फिल्म में एक और बहुत प्यारा सा गीत था आशा जी की आवाज़ में, मेरे अंगना आए रे घनश्याम। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत गीत था, हालांकि इस धुन पर नहीं था लेकिन गीत बहुत खूबसूरत था, तो मैंने सोचा चलिए मैं आपको बता देती हूँ। और फिर 1983 में अगर तुम ना होते का वो गीत था जो मैंने आपको सुनवाया इस प्रोग्राम में, हमें और जीने की चाहत ना होती, बहुत ही खूबसूरत सा गीत। तो ऐसे ही जो है कई बार जो है एक धुन अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल की जाती है, बेस धुन सही रहती है, वही रहती है, और उसे अलग अलग रूप देकर जो है नए नए गीतों में इस्तेमाल किया जाता है, और ये चलन बहुत पहले से चलता आ रहा है। और फिर सॉन्ग्स रीमेक भी हो जाते हैं, पूरे के पूरे गाने को एक अलग ही धुन के साथ में कुछ अलग ही बनाकर रिलीज़ कर दिया जाता है, बोल वही होते हैं, धुन डांस वही होता है, और फिर भी बहुत अलग हो जाता है वो गाना, आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। तो उनके ऊपर भी डेफिनेटली मैं एक शो डेफिनेटली लेकर आऊँगी आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज ये जो मैंने आपके लिए गीत पेश किए और जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई वो आपको पसंद आई होगी। तो अपने दिल की बात हमें ज़रूर ज़रूर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो मैं आपको ये बता दूँ कि ठीक 1 बजे होंगे मराठी में समाचार, और उसके बाद होगा कार्यक्रम हिट एंड हॉट। किन्हीं कारणों से आज हम आपकी जो है फरमाइश नहीं ले पाएंगे, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जो मैं गीत और जानकारियां आपके लिए लेकर आई हूं आप उन्हें डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। तो चलिए सुनवाती हूं अब, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है, और इस घंटे के दो आखिरी गीत इस धुन के नहीं हैं, अलग गीत है, लेकिन गीत बहुत खूबसूरत है। तो आइए आपको सुनवाती हूं वही गीत जो हमारे दिलों में बहुत चुपके से बस जाते हैं।

मेरे महबूब फिल्म से ये गीत लता जी की आवाज में शकील बदायूनी के लिखे हुए बोल, और कंपोज किया था इसे नौशाद साहब ने। बेहद खूबसूरत सा गीत इस चिलचिलाती गर्मी में आपको थोड़ी सी राहत देता हुआ ये गीत हमने अभी पेश किया यही हिट एंड हॉट कार्यक्रम में 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ।

जब बात हुई है धुन की, तो धुन की बात क्यों ना करूं मैं। तो आइए सुनते हैं धुन का एक और वर्जन धुन की। आज के ये जो गीत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो कुछ ऐसे गीत है जो अक्सर नए गीतों की भीड़ में, नए गीतों की दौड़ में हम सुनना भूल गए हैं, या फिर याद आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो कोशिश की है कि आज मैं ऐसे ही कुछ गीत चुनकर आपके लिए लेकर आऊँ जो अन्य गीत

चलिए अगले गीत से पहले आपको ये बता दूं कि ठीक 1:30 पर होंगे मराठी में समाचार, और समाचारों के उस पार हमारा ये इन भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम जो है, जिन्हें अक्सर हम गीतों की दौड़ में भूल जाते हैं, वो यूं ही चलता रहेगा हिट एंड हॉट पे। आप है मेरे साथ यानी ममता सहगल के साथ 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम हिट एंड हॉर। कुछ गाने होते हैं जो हमेशा हमारे जहन में बसे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी की भाग दौड़ में और नए गानों के आने जाने में और नए फेवरेट्स बन जाने के चक्कर में हम उन गानों को भूल जाते हैं। लेकिन जब अचानक से वो गाने हम कहीं पर सुनते हैं तो कुछ बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं जो ताज़ा हो जाती हैं, कुछ ऐसी यादें होती हैं जो अनायास ही हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आती हैं, कुछ आंखों में आंसू भी ले आती हैं, कुछ गीत हमारे दिल से नहीं हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं।

चौकी। और अब इसी के साथ चाहूंगी आपसे इजाजत इस वायदे के साथ कि फिर बहुत जल्द होगी मेरी और आपकी मुलाकात, लेकिन उस मुलाकात के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल तो आपको ये बता दूं कि बस अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और आप के लिए यहाँ पर मनोरंजन का पूरा इंतज़ाम है। 2:30 बजे से आप सुन सकेंगे हमारा मराठी कार्यक्रम, और उसके बाद में हमारी जो कार्यक्रम की लिस्ट है वो लंबी चलती जाएगी। मेरी और आपकी अगली मुलाकात तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी एक गीत है इसे गुनगुनाते रहिए।

0: में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: Will become even more important to the world.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
4: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि मुन्नार कुमारकोम निलाक्कल कुमिली सबरीमला वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा चंडीगढ़ पूर्वी मध्य प्रदेश पंजाब उत्तर प्रदेश विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ಸಾಗ ಕಳಪ ಸಾವ ಕಳಪ ಸಾವ ಕಳಪ

ಪುರತಿ ಹಾನಿ ಪುರತಿ ಹಾನಿ.

ಆದಿ ಮಾಯ ಸ್ವಯಂ ಮಹಾ ಪಿತಾಮ.

0: 107.1 MHz, musically yours.
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपके आरजे दोस्त अमिता और लेकर आ गई हूं अपने साथ अपना सुनहरा पिटारा। और शाम के ठीक 5:03 का वक्त और ये वक्त होता है कार्यक्रम लव यू जिंदगी का। और मैं तो चाह रही थी कि बस आपको हल्की सी झलक ही दूं, लेकिन गाना भी शुरू हो गया और आपको पता ही है कि आज मेरे पिटारे में कौन से रंग के गाने मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ। और कार्यक्रम लव यू जिंदगी वो कार्यक्रम जहाँ पर हम बहुत सारी बातें करते हैं जिंदगी के बारे में, जिंदगी से जुड़ी हुई उन तमाम बातों के बारे में। और अब उन तमाम बातों के बीच में आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं वो तो पता चलेगा जब आप बने रहेंगे मेरे साथ।

0: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
1: पगली जीपीएस फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
0: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
0: हाय, ये है एफएम रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
1: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं उस बात के बारे में जो अगर बरकरार ना रखा जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, और कई बार इंसान जो है वो भी अंदर से टूट सा जाता है, अकेला हो जाता है, और वो रिश्ता है भाषा और संवाद का। दरअसल मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि हमारी जो भाषा होती है वो भी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है और किस तरह से कितना उसका असर पड़ता है, और उसके बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे लगने लगा कि ये भी तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में भी अगर कभी संवाद की कमी हो जाए तब रिश्ता भी उसी तरह से टूटने लगता है। तो बस फिर क्या, फिर सोचा कि भाषा और संवाद के बारे में ही आज ज़रा आपसे भी संवाद किया जाए। दोस्तों कभी सोचा है कि एक भाषा दरअसल कैसे गुम हो जाती है, कैसे वो दम तोड़ देती है? वो अचानक तो नहीं मरती, जब धीरे धीरे लोग उसे बोलना छोड़ देते हैं, बच्चे अपनी मातृभाषा में जवाब देना बंद कर देते हैं, घर में जब शब्द जो है हम उनका उच्चारण नहीं करते, हमारे उस मातृभाषा में जब हम बातें नहीं करते, तो बस भावनाएं भी खोने लगती हैं और कहीं ना कहीं वो भाषा भी गुम होने लगती है। और आज लव यू जिंदगी कार्यक्रम में बातें हम करेंगे भाषा और संवाद के बारे में, पर साथ ही साथ हम एक बीच बीच में छोटे छोटे म्यूजिकल ब्रेक भी लेते रहेंगे, और ऐसा ही एक म्यूजिकल ब्रेक आ रहा है आपकी ओर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी अपनी आर्ज दोस्त समता के साथ, और आज कार्यक्रम में बातें भाषा और संवाद की। हमारी वो बोली भाषा जिसे हम अपनी मातृभाषा कहते हैं, जिसमें बच्चा भी जब बड़ा होते होते वही भाषा सीखता है, लेकिन जब दुनियादारी शुरू होती है तो बस कोई और भाषा जो है वो स्थान ले लेती है, बस हमारी जबान पर वही भाषा आने लगती है। और फिर कैसे एक हमारी जो मातृभाषा थी जिसे बोलने से भी हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था, वो छूटने लगती है। तो उस भाषा के बारे में भी और रिश्तों में जब संवाद ना हो उस बारे में भी आज हम बातें कर रहे हैं, और अपनी बातों को हम जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PMSuryaghar.gov.in पर।

दोस्तों, जैसे कि हमने बात कही कि जब भाषा का इस्तेमाल होना बंद हो जाता है धीरे धीरे, जब हम अपनी उस मातृभाषा में बात करना बंद कर देते हैं, ठीक उसी तरह से जब रिश्तों में संवाद नहीं होते हैं तो बस रिश्तों में भी दूरियां आने लगती है। दोस्तों, भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, उसमें माँ की डांट भी होती है, दादी की कहानियां भी होती हैं, पिता की सलाह भी होती है, और साथ ही साथ होती है बचपन की वो खुशबू जिसकी याद हमेशा हमारे दिलों में ताज़ा रहती है। उसी तरह से संवाद सिर्फ बातें नहीं होता, उसमें भरोसा होता है, गलती हो जाए तो माफ़ी भी होती है और प्यार भी होता है, और होता है वो एहसास जो हमें ये दिलासा देता है कि कोई तो है जो सच में हमें सुन रहा है।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में दामिनी फिल्म से ये गीत ओनली ऑन एफएम रेनबो जो है म्यूजिकली योर्स। दोस्तों आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में हमने टाइप करना तो सीख लिया, लेकिन आपने भी इस बात को महसूस किया होगा कि हम एक्चुअली में दिल से बोलना और ध्यान देकर सुनना कहीं भूल गए हैं। हम भाषाएं इसलिए बचाना चाहते हैं क्योंकि उनमें हमारी पहचान बसती है, और रिश्तों में संवाद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनमें हमारी

की बस्ती है। और दोस्तों भाषा की जब तक मैं बात कहूँ तो बस एक बात जो मैं हर बार कहती हूँ कि आप जब जॉब करने जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, या बड़ी कोई भी दुनिया में जब आप काम करने के लिए जाते हैं, तब आपको नई नई भाषाएं सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि हम अपनी मातृभाषा को पीछे छोड़ दें। और साथ ही साथ ये भी बात ध्यान में रखने वाली है कि भाषा को ध्यान में रख कर के ही हम किसी को छोटा या बड़ा आके उसके स्टेटस को बना दें। क्योंकि कई बार भाषाएं पीछे इसलिए भी छूट गई क्योंकि एक फला भाषा को हमने सोचा कि अरे अगर ये इस भाषा में बात करेंगे तो यानी कि वो अपग्रेडेड नहीं है, वो दुनिया के साथ नहीं चल रही है। वहीं अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है तो आपको एक पर्टिकुलर भाषा आनी ही चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन में उतरना है। लेकिन जब बात हो अपने आप को व्यक्त करने की और साथ ही साथ अपनी उस मातृभाषा को बचाने की जो आपकी अपनी बोली भाषा है, आपके उस राज्य की, आपके उस नगर की, उस शहर की भाषा है, तो उसे बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो लिखित में नहीं पाई जाती हैं, जो जिंदा रही सिर्फ और सिर्फ बोलने की वजह से, क्योंकि लोगों ने आपस में बातचीत उसी भाषा में की और बस उसी के चलते वो भाषा भी बनी रही। तो भाषा के बारे में और भी बात कहूँगी, पर फिलहाल ये भी बता दूँ कि अमरावती से पंकज महोद और साथ ही साथ मुंबई से प्रकाश शिंदे ने फ़ोन करके बताया कि भाई हम आपको सुन रहे हैं और मुझे पता है ऐसे हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जिनके फ़ोन कॉल मुझ तक नहीं पहुँचे हैं और ना ही मैसेजेस आए हैं, लेकिन वो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा, पर साथ ही साथ बीच बीच में लेते रहेंगे म्यूजिकल ब्रेक भी।

तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बोली भाषा है, जो मातृभाषा है, वो जिंदा रहे, तो उसे बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता जिंदा रहे, तो दिल खोल कर बात कीजिए, क्योंकि चुप्पी धीरे धीरे दोनों को ही ख़त्म कर देती है। तो आज किसी अपने को फ़ोन कीजिएगा, उनसे उनकी भाषा में अगर आपको आती हो तो बहुत बढ़िया है, वरना अपने किसी दोस्त से जिसके साथ आप अपनी मातृभाषा में, अपनी उस स्टेट लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, उनसे बात कीजिएगा। दोस्तों से दिल की बात कीजिएगा और उस इंसान को सुनिएगा जो शायद सिर्फ सुने जाने का इंतज़ार कर रहा है।

0: हम रेनबो को रंगी बनाएंगे। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो,
1: म्यूजिकली योर्स।
2: तो दोस्तों, अब लव यू जिंदगी कार्यक्रम को हम भी समेटते हैं और बस इतना ही कहूंगी कि भाषाएं बोलने से जिंदा रहती हैं और रिश्ते संवाद से, यानी कि कम्युनिकेशन से। तो बस अब फिलहाल हम करते हैं समाप्त लव यू जिंदगी कार्यक्रम को, पर फिलहाल सुनाएंगे आपको दो गाने बैक टू बैक, और साथ ही ये भी वादा कि फिर से मिलेंगे लव यू जिंदगी के एक नए अंक में, एक नई सोच और एक नई बात के साथ।

दोस्तों बता दें आपको कि ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे हमारे नागपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार और मैं मिलूंगी आपसे ठीक 6:15 पर कार्यक्रम अंदाज़े बयां में। तो सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, जो है म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: दोस्तों नमस्कार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। शाम के ठीक 6:16 होने को है और आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम अंदाजी बयां।

वो कहते हैं तुम आना जैसे पतझड़ के बाद गुलमोहर के फूल आते हैं। तुम आना जैसे पतझड़ के बाद गुलमोहर के फूल आते हैं। तुम आना जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष के रंग छाते हैं। तुम आना जैसे समंदर के एक लंबे सफर के बाद किनारा आता है। तुम आना जैसे कहानी के आखिर में सब ठीक हो जाता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां ओनली ऑन एफएम रेनबो, जो है म्यूजिकली योर्स। और आज आपकी आरजे दोस्त समता अंदाज़े बयां कार्यक्रम में एक अलग ही अंदाज के गीतों को सजा कर लाई है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

हम खुद से ही रूठकर कहीं दूर निकल गए थे। हम खुद से ही रूठकर कहीं दूर निकल गए थे, इस शोर में भटकते हुए न जाने कहाँ खो गए थे। फिर कायनात की साजिश ने हमें तुमसे मिला दिया। फिर कायनात की साजिश ने हमें तुमसे मिला दिया। जो दिल कब से खामोश था, उसे फिर से जीना सिखा दिया।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों शाम के ठीक 6:51 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां। और इस कार्यक्रम के बाद आएगा आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम, जहां पूरी होती है आपकी पसंद। और आपकी पसंद हम तक पहुंचाने के लिए आप आज हमारे नंबर्स टू नोट कर लीजिए। हमारे नंबर हैं 2281-5787 और 2281-5789। दोस्तों आपने भी अपने लाइफ में ये महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि किस तरह से अंदाज़े बयां बस अगर बदल जाए तो कैसे अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। यानी कि कभी बनती बनती बात बिगड़ सकती है और कभी अगर अंदाज़े बयां हो आपका एकदम अलग से तो बिगड़ी हुई बात भी बन जाती है। फ़र्क होता है बस अंदाज़े बयां का। और जिस तरह से हम अपनी कोई बात कहें उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अब जैसे मान लीजिए अंग्रेज़ी में अगर आपको किसी को कहना है कि आप बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। पर वही बात जब आप कहेंगे नज़ाकत वाली, तहजीब वाली उस भाषा में यानी कि उर्दू में, तो हम कहते हैं चर्चे नशे के चल रहे थे मैं जिक्र तेरी निगाहों का कराया, चर्चे नशे के चल रहे थे मैं जिक्र तेरी निगाहों का कराया, जब बात सुकून की छिड़ी मैं बात तेरी बाहों की कराया।

अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज़ों में खामोशी द म्यूज़िकल, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। और दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम अंदाज़े बयां होता है समाप्त। और बता दें आपको कि ठीक 7 बजे आप सुनेंगे मराठी में समाचार, और ठीक 7:10 पर लेकर

0: अपने सुनहरे पिटारे को साथ आपकी आज दोस्त मिलेगी आप सभी से कार्यक्रम हम तुम में, और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाना मत भूलिएगा। 2281-5787 इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी पसंद के गीत हम तक पहुंचा सकते हैं और हम वो गीत आप तक पहुंचाएंगे।
1: सबके अलग है अंदाज, कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: दोस्तों नमस्कार, शाम के ठीक है 7:11 का वक्त और ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम का, और आप अपनी पसंद हम तक पहुंचा सकते हैं 2281-5787 इस नंबर पर कॉल करके। और कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं अमरावती से आई इस पसंद के साथ, पसंद भेजी है पंकज मोहर ने और फिल्म है डर।

उदित नारायण साथियों की आवाजों में डर फिल्म का ये गीत ओनली ऑन एफएम रेनबो जो है म्यूजिकली योर्स, और यहाँ म्यूजिकली योर्स आपके अपने चैनल पर मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता, और कार्यक्रम चल रहा है हम तुम और आज हमने थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया है दोस्तों। एक वक्त था जब अपनी पसंद के गीतों के लिए हम बाकायदा चिट्ठियाँ लिखा करते थे, फिर उसके बाद हम एकदम टेक्नोलॉजी बदल गई और उसके बाद हम ईमेल भी करने लगे, साथ ही साथ हम मैसेज भी करने लगे और व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम अपनी पसंद जो है वो बताने लगे। अच्छा, इस व्हाट्सएप आने के पहले हम कॉल करके भी अपनी पसंद बताया करते थे रेडियो स्टेशन पर, और बस आज वही पुराने दिनों को याद कर रहे हैं हम यहाँ पर। और इसीलिए मैंने कहा कि आप अगर अपना गाना सुनना चाहते हैं, अपना पसंदीदा गाना सुनना चाहते हैं, तो बस आज मैसेज नहीं लेंगे हम, आज सिर्फ जो कॉल करेंगे हमें, हम उनके ही पसंद के गाने उन तक पहुंचाएंगे। तो 2281-8157-8, 2281-5789 ये है आपके अपने एफएम रेनबो का नंबर जो है म्यूजिकली योर्स, तो ये नंबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होना ही चाहिए। 7:17 का वक्त बढ़ रहे हैं कार्यक्रम में आगे, और जो अगली पसंद है फना फिल्म के गाने की वो आई है मुंबई से, और पसंद भेजी है प्रकाश शिंदे ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त समता। और कुरला से हमें फोन किया आयाज चौधरी ने और वो सुनना चाहते हैं हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म का ये गीत।

और दोस्तों कार्यक्रम में मैं अगला गीत सुनवाऊं उससे पहले एक बार फिर आप सभी को मैं एक नंबर और बता रही हूं, और ये नंबर है 4515 4136, माफ़ कीजिएगा, नंबर है 4515 4132। और अगर आप अपने मोबाइल नंबर से इस नंबर को डायल करेंगे तो 022 लगाना मत भूलिएगा, तो नंबर हो जाएगा 022 4515 4132। और अगली जो पसंद है वो है ईमानदार फिल्म के गीत की, और इस गीत को सुना चाहा है प्रमोद चिंचोलकर ने।

सुरेश वाडेकर और आशा भोसले की आवाज़ों में ईमानदार फिल्म का ये गीत। और अगली पसंद पर बढ़ने से पहले दोस्तों लेके हम एक छोटा सा ब्रेक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

उदिता नारायण की आवाज़ में बेवफा फिल्म का ये गीत, और इस गीत को हमने सुना चैम्बूर से प्रदीप की पसंद पर। और दोस्तों, अब मेरे यानी कि आपकी आरजे दोस्त अमिता के टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम आ गया है, जो कि स्टूडियो में आ गई हैं आरजे एंजेला, जो आपके साथ होंगी ठीक 8 बजे से लेकर कार्यक्रम रॉक विद द चॉक। तो आप सुनना मत भूलिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त अपनी आरजे दोस्त अमिता को इसी वादे के साथ कि बहुत ही जल्द होगी हमारी और आपकी अगली मुलाकात। और हमारी अगली मुलाकात तक रखिए अपना और अपनों का अच्छी तरह से ध्यान। दो गानों के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, और इन दो गानों के साथ पूरी होगी पसंद। कोल्हापुर से अरविंद कुलकर्णी की, इंदौर से अजय साखरे की, और साथ ही साथ संजय दर्शन और दिलीप टिप्पणी की।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी

0: सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले

0: की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर

0: पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में

15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रंग के महफिल सुन रहे हैं आप और आपके साथ मैं जरी इस वक्त। कभी आपने भी महसूस किया होगा कि जो रिश्ता बहुत ख़ास है वही सबसे दूर चला जाता है। डूब जाते हैं इस खूबसूरत गज़ल के एहसास में अब और महसूस करते हैं उन लम्हों को जो शायद आज भी कहीं दिल के किसी कोने में ज़िंदा है। कभी कभी अल्फाज कम पड़ जाते हैं और एहसास खुद ब खुद आँखों में उतर आते हैं। आपको जो अगली गज़ल हम सुनवाने वाले हैं उससे ऐसे ही ज़िंदगी से जुड़ी कोई यादें ताज़ा हो जाती हैं कि किसी का चेहरा देखकर आप उसमें कितना खो जाते हैं कि पूरी कायनात उसी के चेहरे उसी की आंखों में समा जाती है।

रात की खामोशी में कुछ बातें दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचती हैं, और ये गजलें उन्हीं एहसासों का नाम है।

0: ख्वाब बनकर कोई आएगा, दिल में हल्की सी दस्तक दे जाएगा, कुछ पल ठहरेगा यादों की तरह, फिर एक मीठी मुस्कान छोड़ जाएगा।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
0: जिंदगी में कुछ लोग सच बनकर आते हैं और कुछ लोग सिर्फ ख्वाब बनकर, लेकिन हर मुलाकात, हर एहसास अपने पीछे एक कहानी छोड़ जाता है।

मैं वक्त के साथ साथ चल रहा हूँ, जैसे जैसे काम मिलता गया और गजलें मकबूल होती गई वैसे वैसे आपको सुना रहा हूँ।

कुछ मुस्कुराहटें ऐसी होती हैं जो चेहरे पर तो दिखती हैं लेकिन दिल की कहानी कुछ और कहती है। कुछ गजलें ऐसे ही एहसासों को आवाज देती हैं, दर्द, खामोशी और छुपे हुए जज्बातों की कहानी। आप सुन रहे रंगे महफिल, मैं हूँ जर्रीन।

इजहारे याद करूं या पूछूं हाले दिल उनका, ए दिल कुछ तो बहाना बता उनसे बात करने का। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक

जब दिल की बेचैनी हद से गुजर जाए, दिल के आसमां पर दूर दूर तक सिर्फ वीरानगी ही वीरानगी नजर आए और अरमानों की गर्म हवाएं हमें दिन रात चलाए, तब तो मन्ना यही होती है कि काश दूर कहीं आसमान पर बादल उमड़ आए और रात की चंद बूंदें हमारे तन को ही नहीं मन को भी भिगो जाए।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

54 मिनट। कुछ छुपे रिश्ते खूबसूरत किताब की तरह होते हैं। ये किताब भले ही पुरानी हो जाए पर उसके अल्फाज नहीं बदलेंगे। कभी याद आए तो पन्ने पलटकर जरूर देखिएगा। हम जैसे हैं वैसे ही कर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया। NIA के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण

कर संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुसूचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 92 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत आप सभी का। 12:12 अब 13 हो चुके हैं और इस बहुत ही बेहद कहना चाहिए खूबसूरत बेला में आप सभी का स्वागत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, जिसमें प्रोग्राम है आपके सामने जीरो आर शो। इसीलिए हमने जीरो आर से ही शुरुआत की, इनको तवज्जो देते हुए, इन्हें तरजीह देते हुए इन घड़ियों को, क्योंकि 00 बज के अब 13 अब 14 भी होने वाले हैं। तो जिस रफ्तार के साथ सेकंड्स और मिनटों की स्पीड के साथ घड़ी भाग रही है, हमें भी रफ्तार बढ़ानी होगी, लेकिन आपके साथ कुछ बातें करके। और बातें क्या होंगी इसी तरह की, और उनके साथ क्या होगा, देखिए बातों के साथ हम तो बहुत चटपटे गाने आपके लिए लेकर आए हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो

0: पर भी एक ऑप्शन है ना, एफएम तो आप सुन ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप एफएम को एप्स के जरिए भी सुन सकते हैं। ये हालांकि मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, पर मैं याद दिला रहा हूँ आपको, हमारे जिन श्रोताओं के पास ये ऐप नहीं है और उन्हें हम तक पहुँचने में कोई कारण बताना पड़ रहा है कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम उस कारण का निवारण कर देते हैं और बता देते हैं कि आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप, जो हमारा नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबके सामने रखता है, वो है, और इससे आप देश और दुनिया के हर कोने हर हिस्से से आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल्ली के प्रोग्राम सुन सकते हैं, और ख़ासतौर से ये शो जो कि अब है दिन का पहला शो। जी हाँ, इसी शो के जरिए हम दाखिल हुए हैं 27 मई सन 2026 में। ये पहला शो होगा इस दिन का हमारी फ्रीक्वेंसी पर, इस चैनल पर, और आप सभी का स्वागत अपनी बातें रखने के लिए। अपनी कुछ मन की बात आप कहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं 9868107070, 9868107070 हमारा नंबर, और ये है एक बहुत ही आरामदायक पुल जिसमें आपके और हमारे बीच में कोई फासले खास रह नहीं जाते। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़िए हमारे साथ क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है जीरो आवर शो मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग है और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और

पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर अपना फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 1:05 हो चुके हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

मोहित चौहान जी की आवाज में ये दूरियां। 1:11 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी रात मेरे यानी अर्चित के साथ।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के FM रेनबो के साथ। 1:33 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और

0: 1:45 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी रात मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। भारत ने कल नेपाल की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 10 बंदी परिवहन ट्रक भेंट किए। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये वाहन नेपाल की सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संचालन क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसलों को चुनौती देने वाली दोषियों की अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाभाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाभाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। IPL क्रिकेट में धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर IPL 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बिल्कुल, आपके बिन हमारी भी बात अधूरी है, ये रात अधूरी है और रात के आने वाला जो बाद दिन होगा वो भी अधूरा अधूरा सही होगा। इसलिए क्यों ना आपके साथ ढेर सारी बातें की जाए, बातें मौसीकी से भरी, बातें दोनों से भरी और उन दोनों से भरी, उन खूबसूरत गानों से भरी जो आपको अंदर तक अपनी यादों में डूब जाने का मौका दें। ये वक्त भी ऐसा ही होता है ना, जब इस पहर में हम जितना ज़्यादा सोचते हैं या तो यादों के घेरे में चले जाते हैं या फिर आने वाले दिन या आने वाले दिनों के बारे में हम नियोजन में जुट जाते हैं। आमतौर पर तो ये जो वक्त होता है ये या तो पढ़ने वाले पढ़ते हैं या सोने वाले सोते हैं, काम करने वाले करते हैं, लेकिन हमारे जो साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए अगर मैं कहूं तो हम क्यों ना उन्हें एक लंबी यात्रा पर भेजें यादों की, उस यात्रा पर जहां से लौट कर वापस आने में भी मशक्कत लगे, आपको लगे कि भाई आज कुछ पल जिए मैंने, थकान वाला दिन तो इससे पहले था और आने वाला दिन भी होगा, लेकिन क्यों ना इस रात को खूबसूरत बनाया जाए, दिलकश बनाया जाए और की जाए वो लंबी मुलाकातें उन गानों के साथ जो आज भी हमें उतने ही प्यारे हैं, उतने ही प्रिय हैं, कानों को उतना ही सुकून देते हैं और दिमाग को यादों के साथ जीने का एक नया मौका देते हैं। तो क्यों ना यादों के इस पल को खूबसूरती के साथ, जिंदा दिली के साथ, नज़ाकत और शफाक के साथ जिया जाए, क्यों ना इस याद को, इस रात को रंगीन किया जाए, फिर से साहित्य की तरह उस धारा में बह निकले इस रात के साथ उन यादों के बीच जिन्हें हम कभी भूलना नहीं चाहते। तो प्रोग्राम का नाम भी ऐसा ही है, भुलाए ना भाने, जब अपने आप में लक्ष्य चिन्हित है, इसके साथ पहचान जुड़ी है, तो फिर क्यों ना प्रोग्राम के नाम को सार्थक करें और चलें उसी लंबी यात्रा की तरफ, हमारे यानी आकाशवाणी रेनबो 102.6 के साथ, जिसे आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं जुड़कर। अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाइए, ये बात मैं हर बार कहता हूँ आपसे, आज फिर कह रहा हूँ। तो चलते हैं इस खूबसूरत यात्रा पर मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर। आप सभी का तहे दिल स्वागत और आने वाले दिन की शुभकामनाएं भी हैं, लेकिन फिलहाल इस रात को जीने का ये जो हसीन मौका है ना, प्रोग्राम भुलाए ना बने के जरिए इसके मार्फत इसे क्यों गवाएं ना आप ना मैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

तरानी गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111

अब एक खूबसूरत पेशकश फिल्म खुशबू से थोड़ा लीक से हटकर थोड़ा मूड से बदल कर देखते हैं और कमोबेश इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश भी होगी। फिर मिलेंगे नए शो के साथ, ठीक 3 बजे होंगे अर्चित और उसके बाद 4 बजे मेरे साथ जुड़ेगा प्रोग्राम सारेगामा में। आप सभी का स्वागत। पवन जी सोनभद्र से जुड़े हैं और भी हमारे श्रोता हैं जो हमें मैसेज कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल इस पेशकश के बाद मैं लेना चाहूँगा आपसे इजाज़त, कीजिए गाने को इंजॉय। फिर मिलेंगे 4 बजे, लेकिन उससे पहले अर्चित होंगे आपके साथ मिडनाइट मेलोडीज में। तो जुड़े रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी विश्वास पर आधारित होगा, जो दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में आयोजित मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन फ्रॉम पॉलिटिकल रीसेट टू कमर्शियल डिलीवरी को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोताबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोताबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो के साथ। 3:05 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडी।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: 3:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में

व्यवधानों के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी विश्वास पर आधारित होगा, जो दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में आयोजित मंत्री स्तरीय पूर्ण अधिवेशन फ्रॉम पॉलिटिकल रीसेट टू कमर्शियल डिलीवरी को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोताभाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोताभाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भूली बिसरी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो दिल के बहुत नजदीक हैं लेकिन कहीं कहीं धुंधली छटाओं ने उन्हें अपने आवरण से ढका हुआ है। हम सोचना चाहते हैं उनके बारे में, हम याद भी करते हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो अभी भी धुंधला सा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पष्ट है। वो आपके जहन से, आपके दिमाग से, आपके दिल से बाहर नहीं निकला है। ऐसी ही रंग बिरंगी कुछ बातें हैं, कुछ यादें हैं जो दिल सिर्फ अपने से ही कह पाता है। हम सबसे नहीं कह पाते, हम उन यादों को सबके साथ साझा भी नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे दिल के करीब है और वो चाहकर भी दूर नहीं जाता। ऐसी ही खूबसूरत यादों, खूबसूरत बातों को, और जो आज हो रहा है हमारे साथ, आज जिस भागदौड़ के साथ, जिस कश्मकश के साथ हम जिंदगी को जीने पर आमादा हैं, या तो कहीं मजबूरियां हैं, जरूरतें हैं, या कहें कि ये वक्त का तकाजा है, हम उन यादों में जा ही नहीं पाते। उन बातों की तरफ हम मुड़कर देखना चाहें भी तो कई बार ऐसा नहीं होता, लेकिन उस धुंधलेपन ने कहीं ना कहीं जो छाप हमारे जहन में छोड़ी हुई है ना, हमारे दिलो दिमाग में, वो पता है कौन को रहता है? वो को रहते हैं खूबसूरत गाने, वो मदहोश कर देने वाले नगमे जो ने आप सिर्फ बैठकर लेटकर कहीं अपने ही धुन में खोकर मगन होकर सुनना चाहते हैं, उनके बारे में सोचना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसी ही खूबसूरत यादों और उनकी बारात को लेकर हम आए हैं। ये खूबसूरत प्रोग्राम रंग बिरंगी धुनों से सजा, नए पुराने गीतों को मिश्रण के साथ, सम्मिलन के साथ हम लेकर आए हैं आपके पास आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। ये तो है फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए आप बहुत दूर दराज के इलाकों से भी, देश विदेश से भी हमें सुन सकते हैं। तो दुनिया के हर कोने, हर हिस्से तक पहुंचने के लिए, हमारी आवाज़ को अपने तक पाने के लिए आप ट्यून इन कीजिए आकाशवाणी रेनबो दिल्ली। करना यह है कि पहले इससे आपको ढूंढना है न्यूज़ ऑन एयर ऐप, जहां ये पता आपको मिलेगा। और आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बड़ी कसरत नहीं है, थोड़ी सी कसरत है। आप ऐसे बहुत लोग तो शायद जुड़े होंगे ही अभी, क्योंकि अब इसकी रीच, इसकी पहुंच अब काफ़ी दूर तक है, और बहुत दूर से हमारे श्रोतागण, हमारे साथी हमें मैसेजेस करते हैं, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपने स्नेह से हमें नवाजते हैं। तो उस सब का आभार। और इससे पहले कि सूरज की जो पहली किरण है वो दुनिया को अपने आगोश में ले, हम तैयारी कुछ ऐसी करते हैं कि दिन आने वाला जो है ना, वो हमारा तरोताज़ा रहे, खूबसूरत रहे, पॉजिटिव नोट्स के साथ चले और चलता रहे। आप जुड़े मेरे साथ प्रोग्राम सारे गांव में, मैं हूं रजत, आकाशवाणी रेनबो 102.6, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो, अब रेडियो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

बिजली आ चमके कभी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।